0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाची बुझी भर बैंक को आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलो गरौ। कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो रे कहाँ जान्छ निकेरी बुझी भर खुल्याको वेबसाइट को URL चेक गरौ।
2: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौ। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौ।
3: सतर्क रहौ।
2: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहित में जारी संदेश।
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।
5: ए बा आई गई क्या? आज तो पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
6: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन के ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मित कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
5: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
6: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-597-02-17 सम्पर्क गर्या।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है ई पत्रिका।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर नगरपालिका के बजेट 1.3 अरब कार्यवाहक प्रमुख के विषय में विवाद हो गया, नगरसभा हुईना ढिलाई। देशभर मानसूनी बाढ़ के प्रभाव, आज बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना। जानकी के जौलपुर में अपांगता रहल व्यक्ति हुकरन के लक सचेतनामूलक कार्यक्रम। नहर में बेपत्ता शिवेन्द्र साई के खोजी के लक सहकार्य करना प्रहरी के आग्रह। प्रविधि जन्य लैंगिक हिंसा नियंत्रण करना राष्ट्रीय सभामन से संकल्प प्रस्ताव पारित। पूरा खबर। टीकापुर नगरपालिका के 19 नगरसभा से आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख 1.367,77,000 रूपया के बजेट लानगिलबा। बुधवार बैठक सभा से संघीय सरकार मन से 65,56,00,000 रूपया और सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से 14,66,00,000 रूपया और आंतरिक आय मन से 24,47,00,000 आय बिना अनुमान करलबा। आर्थिक विकास समिति के संयोजक यज्ञ प्रसाद न्यूपानी से प्रस्तुत करलाक विनियोजित बजेट ऊपर सशर्त बाहेक के बजेट में प्रशासनिक खर्च में 21,00,00,000 रूपया नगरपालिका के केन्द्र मन से संचालन हुआ आयोजना के लाख समेत 9,80,00,000 रूपया तमाम शाखा हुकरण के लाख 2,35,00,000 रूपया और नगर के वाड़ा में गौरव के आयोजना के लाख 9,50,00,000 रूपया नगर स्तरीय आयोजना के लाख समेत 9,50,00,000 हो वाड़ा के पूंजीगत खर्च के लाख 6,31,00,000 रूपया विनियोजन करलबा। नगर प्रमुख उप प्रमुख कार्यवाहक प्रमुख फे नई रलक टीकापुर नगरपालिका के ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारू के अध्यक्षता में बैठक सभा से सभा के नीति तथा कार्यक्रम में वार्ड नंबर 1 के वार्डाध्यक्ष मोहन बिका प्रस्तुत कर रहे से आर्थिक विधेयक वार्ड नंबर 2 के वार्डाध्यक्ष दीपक चौधरी प्रस्तुत कर रहे हैं। टीकापुर नगरपालिका से सभा के स्थानीय कच्चा पदार्थ में समेत प्रयोग करके स्थापना होना उत्पादनमूलक उद्योग नगरपालिका में बुझाईपना राजस्व शुल्क में 10 वर्ष के लाख छूट देना नीति लहलबा। विदेशी नागरिक उपकरण व्यवसाय दर्ता करना पर्लमा 25,000 थरौटी लेके व्यवसाय दर्ता करके संचालन कर देना व्यवस्था करलबा। अवैध चोरी निकासी उसक रोकना प्रहरी से पकड़ाव करके दंड जरिवाना मन से नेपाल प्रहरी 20% प्रोत्साहन रकम उपलब्ध करेना नीति लहलबा। उसक सरकार के स्वामित्व में रलक घर जग्गा सरकारी अस्पताल के जग्गा उसक गुठी के जग्गा मुनाफा के उद्देश्य से धर के संचालन करलक शिक्षण संस्था कंपनी समिति प्राधिकरण बोर्ड के घर जग्गा मुनाफा के उद्देश्य नई धर के संचालन करलक संघ संस्था के घर जग्गा धार्मिक संस्था अंकरण के घर जग्गा खाने पानी वस्तुको मसान घाट जैसी सार्वजनिक स्थल में घर ओ समेत कर घर जग्गा में संपत्ति कर नई लगना नीति लहलबा। नगरपालिका के माठहट में बहाल में लगायल शटर वस्तुके भाड़ा असूली के लाख समेत विशेष व्यवस्था करल बा। नगर पालिका से आर्थिक विधेयक में टोकल समय में भाड़ा नहीं बुझेना हुकरन जरिवाना छूट से लेके किस्तबंदी के सुविधा समेत देना व्यवस्था करल। टीकापुर नगर पालिका के भाड़ा लगायत के समेत 57 से 3,00,00,000 रूपया से ढेर रूपया असूली करना बाकी रलक राजस्व प्रमुख नंद बहादुर केसी बतैले बाटे। टीकापुर नगरपालिका के नगर प्रमुख उप प्रमुख दोनों पद रिक्त रलक अवस्था में कार्यवाहक नगर प्रमुख होना के हुई कहना विवाद में अदालत में पुगल पाछे नगरसभा ढिलाई हुईलक हो। 2082 फागुन में कार्यपालिका के बहुमत सदस्य हुकरा कार्यवाहक नगर प्रमुख चुनजिलक रामबहादुर नागरजी है जे 14 गते कार्यपालिका के बैठक से बहुमत सदस्य हुकरा मिलके हटाके बलिराम चौधरी कार्यवाहक प्रमुख बनाए रहे। चौधरी के अध्यक्षता में बैठक कार्यपालिका बैठक असार 5 गते नीति तथा कार्यक्रम लन्न तैयारी करल रह मनो नागरजी ये आगे नए सर्वोच्च अदालत पुगल पाछे चौधरी कार्यवाहक के रूप में काम नहीं करे न गये के अल्पकालीन आदेश जारी करती असार 8 गते दोनों पक्ष है बोलागिल रह असार 8 गते के सुनवाई असार 22 केलक सारल पाछे सभा के ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारू के अध्यक्षता में सभा के बैठक बैठ के बजेट पारित हुईलक हो। असार 10 गते बजेट लाने पर्ना कानूनी व्यवस्था हो भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय से समय में सभा करना करलक निर्देशन अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करके फे सभा कर परल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल बटोली अदालत जैना रलकराम बहादुर नागरजी सभा में उपस्थित नैहिला कार्यपालिका के पूर्व प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल संवैधानिक व्यवस्था के सम्मान करती जनसरोकार के विषय में रलक राजनीतिक विवाद लम्बेटी जाके सभा के सदस्य हुकरा निकास देना जरूर रहल बटोले बाटें। सभा के शून्य समय में ओ बजेट ऊपर छलफल में भाग लेती सभा के सदस्य हुकरा तमाम किस्म के धारणा प्रस्तुत कर रहे। सभा के सदस्य लालबीर चौधरी विविध प्रस्ताव प्रस्तुत करती कम विद्यार्थी रलत विद्यालय मर्ज करना तमाम कारण से काम संपन्न नहीं हुलक विकास योजना के म्याद पुष मशांत भीतर थप्ती जैना जानकारी देले बाटे। बजेट ऊपर छलफल में भाग लेती सभा के सदस्य राजकुमार चौधरी कृषि में बसंते मकई खेती के किसान उक्रांत प्रोत्साहन करे पर्ना बटोले बाटे। सभा के सदस्य भरत सावट से पथरिया मोहना कर्णाली के डैम संरक्षण में स्थानीय सरकार फे हेरे पर्ना बटोईटी बजेट के व्यवस्था नहीं हुई लकमा गुनासो करले बाटे। वहां स्मार्ट सिटी रिंग रोड गुलाब सिटी जैसी चर्चा के विषय हेराइल बटोले बाटे। नगरसभा में समसामयिक विषय के बारे में छलफल भाग लेती सभा के सदस्य कमला देवी बिक कार्यवाहक नगर प्रमुख केलक हुई विवाद पालिका है फायदा निहुना बतुटी गीत मार्फत संदेश दिल रहे। सभा के सदस्य तुलसी विकास से फिर दलित महिला उकरण की पीड़ा महसूस करल बटोईटी 2074 साल से दलित महिला सदस्य के रूप में काम करती रला से फिर अपना उकरा दलित कोटा मकेल समेत समेत धरल बटोईले बाट। सभा के सदस्य गणेश घरती मगर से कृषि प्राथमिकता दैके फे बजार होके समेत बहना सिंचाई कुलवा संरक्षण मरमत और दिगोपना में ध्यान नहीं दैके कृषि फार्म करना समेत ऐना दिन में समस्या होना बटोईले बाट। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फेर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं हरियाली बढ़ाऊ चुरे को संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्य को आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलाली द्वारा जनहित में जारी संदेश।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। सरकार से मंत्रालय हुकरण के संख्या घटा के बेगले विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्रालय के गठन करना है इस क्षेत्र में लव पहल के रूप में हेती रह विज्ञान और प्रविधि के खोज अनुसंधान आविष्कार प्रवर्धन तथा विकास से संस्थागत बनेना उद्देश्य से छुट्टे मंत्रालय गठन कर लाखो। विज्ञान तथा अनुसंधान क्षेत्र में नीतिगत अस्पष्टता और बजेट के अपर्याप्तता के कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादन में उचित वातावरण अभाव और प्रतिभा पलायन समस्या हुईती गैलक में नव प्रवर्तन मंत्रालय गठन पाछे यी क्षेत्र में लक्षित परिणाम हासिल करना सहज होने अपेक्षा करगिल बा। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व के पहल मंत्री परिषद से पारित सरकार के शासकीय सुधार संबंधी सही बुदे कार्यसूची के बुदा नम्बर एक में मंत्रालय हुकरण के संख्या आवश्यकता से फे भारी हुके चालू खर्चा बढ़लक समस्या में है समाधान करना 30 दिन भीतर मंत्रालय के संख्या घटना निर्णय सहित के मौजूदा नेपाल सरकार पुस्तक नियमावली संशोधन करके संघीय मंत्रालय के संख्या 17 कायम करना योजना समेत समस्त पारगिलवा वह अनुसार मंत्रालय के संख्या 18 कायम करके बेगले नव प्रवर्तन मंत्रालय बना गिल बा छुट्टे विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय इस क्षेत्र के कुल पूंजीगत खर्चा के कमती में 1% रकम विनियोजन के माग उठैटी ऐलक अभियान वैज्ञानिक तथा स्वतंत्र सांसद महावीर पुन फेसमेत मंत्रालय के नेतृत्व में पुगलबाट मंत्री नियुक्त हुके जेठ 27 गते से लेके बहाली करलक पुन से शून्य मन से समेत ई मंत्रालय के काम है आगे बढ़ेना उद्घोष कर हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम रहल बा देशभर साधारणतया मौसम बदलल बा कलसे हाल गंडकी लुम्बिनी और पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के साथ देश के पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान तथा मधेश कोसी और बागमती प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम खाल के पानी पर्न बा आज देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्याङ सहित मध्यम खाल के वर्षा हिमपात की संभावना बा लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में फिर कुछ स्थान में बागमती गंडकी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन बाज मर्न सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा मधेश प्रदेश और कोशी प्रदेश के तराई में एक दुई स्थान में मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दुई स्थान में भारी वर्षा की संभावना रहल बा इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी से यह असार 13 गते नहर में डूब के बेपत्ता रहलक शिवेन्द्र शाही के खोजी के लाख सहयोग करना आग्रह करल बा इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी से नहर में बंद करके सब के खोज तलाश में सहयोग करके रानी जमरा सिंचाई आयोजना है आग्रह करलक हो 13 गते दोपहर के लम्कीचुआ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 बलचौर स्थित के रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के नहर में लहिना क्रम में भारत नोएडा घर रहल हाल लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 ससुराली में बैठी एलाक 25 वर्षीय शिवेन्द्र शाही लहिना क्रम में नहर में डूबके बेपत्ता हुई रह बेपत्ता के खोजी तलाश करबेर फे हालसम फैला नहीं पड़ला को खोज तलाश करना लाग नहर के मुहान बंद करे पर्न रलक ओर से उक्त नहर बंद करके अनुसंधान तथा खोज तलाश काम में सहयोग कर देना इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी हे आग्रह करल बा जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 8 के वड़ाध्यक्ष तीर्थराज उपाध्याय से अपांगत रहल व्यक्ति हुकरन के सेवा कानून से समेत भैट सम सहयोग करना बतौले बाटे जानकी गांवपालिका के जबलपुर में अपांगत रहल व्यक्ति हुकरन के लाख सचेतनामूलक कार्यक्रम में बोलती वहां ऐसी बतौले खुआ समापन कार्यक्रम में सृजनशील अपांग संघ जानकी के अध्यक्ष प्रकाश बम से सहयोग कर लकमा वाड़ा है धन्यवाद देती आगामी दिन में ऐसी सहयोग सहकार्य कार्यक्रम संचालन करना में हौसला मिलना बटोले बाटे कार्यक्रम में अपांगता हुकरण के परिचय अपांगता परिचय पत्र के वर्गीकरण फायदा पुस्तक अपांगता अलग व्यक्ति के हक अधिकार लगायत के बारे में छलफल कर गिल कार्यक्रम विशिष्ट समेत विहीन कार्यक्रम में दृष्टिविहीन हुकरण औसतक अपांग संघ कैलालीकी जिला सचिव जगत बहादुर चौधरी नेपाल समावेशी अपांग विकास संघ के अध्यक्ष झनक विकास प्रशिक्षण देहल रहें कार्यक्रम में काली चौधरी पतिराम चौधरी ललित परियार तिलक राम चौधरी और लक्ष्मी तिमिलसेना करके 5 जने प्रमाण पत्र से सम्मान कर गिलबा कार्यक्रम में जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 8 भीतर के अपांगता रहल 50 जनन के सहभागिता रह कार्यक्रम में जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 8 के आर्थिक सहयोग को सृजनशील अपांग संघ जानकी गांवपालिका के आयोजन में हुईलक हो खोजखरमा गरी फ्यान्से विश्राम विश्राम पाछ फेर सेबी सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिका प्रेफएम
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
3: यसमा एड्रेसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। राष्ट्रीय सभा के प्रविधि जन्य लैंगिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण के लाभ प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव सर्वसमिति से पारित करल बा। सांसद रेणु चंद से प्रस्तुत करगिलक प्रविधि के प्रयोग करके हुना लैंगिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण एवं महिला उकरण के हक के संरक्षण हो न्याय में पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक नीतिगत कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था करके प्रभावकारी कार्यान्वयन करना संबंधित संकल्प प्रस्ताव सभा से सर्वसमिति से पारित करगिल बा। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल से सभामन से पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन केला महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री हुनकर से प्रस्तुत करगिल प्रतिबद्धता के समेत आधार में प्राथमिकता के साथ कार्यान्वयन करना सरकार है निर्देशन देगिलबा। सरकार से त्रिवी सेवा आयोग के अध्यक्ष में किशोर थापा नियुक्त कर गेल बा। प्रधानमंत्री बालन शाह से सरकार का पूर्व सचिव समेत रहत थापा आयोग के अध्यक्ष में नियुक्त कर गेल बा। अध्यक्ष अध्यादेश मार्फत सेवा आयोग के अध्यक्ष बर्खास्त करल पासे उपद रिक्त रह थापा पूर्वाधार विज्ञ हो वस्तका सरकार के त्रिवी आयोग के सदस्य में रेजना मास्के समेत नियुक्त करल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगरपालिका की बजेट 1,03,00,000 कार्यवाहक प्रमुख के विषय में विवाद हुके नगरसभा होना ढिलाई। देशभर मनसुनी वायु के प्रभाव ओ बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में आज भारी पानी पर्न संभावना। जानकी के जबलपुर में अपांगत रहल व्यक्ति हुकरण केलक सचेतनामूलक कार्यक्रम। नहर में बेपत्ता वीरेन्द्र शाह के खोजी केलक सहयोग करना प्रहरी के आग्रह। उप्रविडिजन ने लैंगिक हिंसा नियंत्रण करना राष्ट्रीय सभा मन से संकल्प प्रस्ताव पारित। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते रहिए। राम राम। टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2082-83 भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकाले टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, बर्घर सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई वाड़ाको काम र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न, सुझाव, गुनासा र सल्लाह सहित सहभागिताका लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते, समय बिहान 8 बजे, स्थान एक नम्बर वाड़ा कार्यालय, नगर विकास समितिको भवन सिटी हल नजिक, टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय।
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: तामयल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261।

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कुटपीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
2: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
1: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन् त भाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602004।
7: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।
8: तहरा राजा जी का दिलुआ टुट जाई।
9: उफ, बल्ल घरक भिटा निखौराइदा।
10: मुस्कान रिथाई, घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का? खेतमा सखलाङका लागि मिनी लैजाइ पर्ना रह।
9: आब उराइदा डान्चे बादा।
10: ल्या ल्या, मै मिनी बनाकर भेजिए तु लैजा दिएस न।
9: हाँ होइठा दाई। ओहो हेरो, यहाँ भित्तामा त ढिला पो बा, माथिले जब दिए परौ टिका हाम सब दिउ। दाई सपका डरल
10: दाई, खै खै कहाँ बाटो छ?
9: यहाँ दाई, यी दाई नाजमका डरल।
10: अरे ल्याउ हाली क्यु बाटो, म चाहिँ मुस्कानबाट सपका डरलस, ल्याउ हाली।
11: काबिल काकी, काबिल
10: हेरो न राकेश, मुस्कान न सपुवा करलस कर
11: ना। त्याओ काकी, तो मुस्कान न्या त्या का शान्त हो बैठो ना। बेन काकी, मुस्कान न स्वास का न सुटाई, हल चल निका राखना।
10: उठा भैया, मुस्कान छाई, स्वास का सुटो ता।
9: उठा।
11: ओ काकी, मुस्कान घलक लुगा, गर गहना, निकब जैना मेकअप फाफर बना दी ता, वो हाथक चुड़िया की निकाल दी ता। वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था ना।
10: बैठा भैया, सबको कटला था और आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर 20 पो निकले ना हो कि?
11: नहीं नहीं काकी, सबको कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई, वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई, पानी के नहीं बुझली।
10: उसी नो कल से धर मेरा लांग था, वो ये निटार था, वाकर सबको कटला था और लगा दी उठा ना नानु।
11: उफे नहीं हुई काकी, घरेलु उपचार जस्ता कि झरबैरा, जंगली खरबुटी ओ जडीबुटी फे प्रयोग गराउने भई बुझ्ली?
10: बुझ्नु नानु बुझ्नु।
11: पहिले काकी, रामेश्वरमा मोटरसाइकल लेखाएका हिट झट्ट से झट्ट साधन खोजकर एन्टिभेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा लैजाइ सेकजाइ, कलसे मुस्कान हुन झट्ट चुम्बर बनाइ सेकजाइ। दादाई का अपना बेन ओटरा बेलासम हमार गाउँ से फोन एन्टिभेनम केन्द्र लगा पर्था कैख स्नेक बाइट नेपाल .org का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें। हाँ डाटा अन कर हेरा पुरा। हाँ हो ली, स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट फिर खुला। हाँ हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंस उपचार कई जिना रही था। हो वहाँ लगी जाए पुरा मुस्कान होना।
10: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई ला।
11: ले ले ले काकी, मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिस्तर में बैठा लारी का झट्ट से झट्ट सर्पदंस उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए, कला से मुस्कान हना बताई सेक जाए।
10: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंस उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
12: ओसेक मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा। मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबो काल मोल के खा समझ साथ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा इसे गले से हुकर सपो विषाहर अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सही उठा
10: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो दस लाख मने यहाँ न बचाई से दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर से दिखा सपवा दस लाख मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जाए इहिले ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद करता भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैखा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए देखा
13: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कापी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
3: पंछी पालन व्यवसाय का लागि जरूरी सूचना बर्ड फ्लू H5N1 पंछी में लगने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो। विगत 3 महीनादेखि देश का विभिन्न स्थान में यह रोग देखा परिरहेको छ। पशु सेवा विभाग सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रण का प्रयास भइरहेका छन्। तसर्थ पंछी पालक कृषक व्यवसायीहरूले रोग को संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं। फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने, अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने, काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने, पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने, कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रानी जमरा कुलरिया सिटिङ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया न करा रेडू बिगड़ी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वाड़ा कार्यालय को सार्वजनिक सुनवाई होने बारे को सूचना। टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वाड़ा कार्यालय को आर्थिक वर्ष 2082-83 में सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रम को बारे में सार्वजनिक सुनवाई होने भएकाले टोल विकास संस्था का प्रतिनिधि उपभोक्ता समिति का पदाधिकारी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि बरघर सामाजिक संघ संस्था का प्रतिनिधि समाजसेवी लगायत सरकारवाला सबैलाई वाड़ाको काम र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न सुझाव गुनासो र सल्लाह सहित सहभागिताका लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते समय बिहान 8 बजे स्थान 1 नम्बर वाड़ा कार्यालय नगर विकास समितिको भवन सिटी हल नजिक टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वाड़ा कार्यालय।
2: टीकापुरको विकासका लागि के गर्दैछ नगरपालिका?
3: नगर विकासका लागि नगरवासीको दायित्व के हुनुपर्छ?
4: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रवाह बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर।
2: टीकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
5: बिहिबार दिउँसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: राम ई लड़का के कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लनबो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कब्बू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या के उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिलाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
2: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
1: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन नरियाल एमबीबीएस न्याम्स
2: यही असार 20 गते शनिबारका दिन
1: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू जस्तै बेला बेला मुटुको गति बढ्ने, हात खुट्टा काम्ने, झमझमाउने, धेरै पसिना आउने, एक्कासी बेहोस हुने, डर लाग्ने, मनमा छटपटाहट हुने, धेरै झस्किने, तर्सिने वा डराउने, असामान्य रूपमा धेरै टाउको दुख्ने, धेरै रिसाउने, जीव दुख्ने, मांसपेशी वा हात जोर्नीको दुखाइ, दुब्लाउँदै जाने, कामकाजमा मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, बेला बेला बेहोस हुने, नराम्रो सपना देख्ने, घाँटीमा केही अट्के जस्तो लाग्ने, छातीमा असजिलो महसुस सुने वा मन स्थिर नहुने, कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने, आत्मगलानी हुने, एक्लै हाँस्ने, मुस्कुराउने, बरबराउने, छारे रोग, मिर्गी रोग, रातिको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्ने, लागू पदार्थको सेवन धेरै गर्ने, बच्चा तथा वृद्धहरूको व्यावहारिक समस्या, ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने जस्ता समस्या भएका बिरामीहरू सम्पर्क गर्नुहोला।
1: सम्पर्क रिमाल मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली
2: डाक्टर आउने दिन असार 20 गते शनिबार।
1: सम्पर्क नम्बर 091-5602-67 मोबाइल नम्बर 98-25-69-13-75 र 98-046-71-598।
3: हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टीबाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाकर धर्ने करिना
4: बैठा बैठा ब्रह्मान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्मान पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाईवेर ब्रह्मिया बेहोश हुई से नाफिला कोसे पास से पकड़ का बैठा पड़ता का
5: ब्रह्मान अगर हुई न कही कमई पकड़ के बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्मान उपचार केन्द्र लैजना सजिलो हुई बा
4: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठाउँबाट मै असक मोटरसाइकल स्वयंसेवक उपलब्धबाट सजिला से हो झट्ट पाजिला से ब्रह्मान चार पहियाका सवारी साधनमा सजिलो बिना मेर्क सुचाक लगक एन्टी भेनम भैलक उपचार केन्द्रमा लैजाइ पर्था
3: अपना उनका जैने करी ना मै द्वान लगा के लाजे
4: वहाँ न कतलक सपक फोटो खिच्ला बाटी कर से उखेलन बिहा फोटो भिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
5: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
6: सफर दस डालन कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच जमा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटी भैनम उपलब्ध हुई ना सर्पदम से उपचार केंद्र में ले जा डाली सफर कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदम से उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
7: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाग आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सिर्दिथा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
5: ई सेवा सबै सधैँ संगई

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करत लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी सन्देश।
2: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी?
3: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
2: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
3: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
2: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
3: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
4: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टी काफुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नयाँ नयाँ डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसन का गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदी का सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैन को शाखा टेकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98684147 99 24 60 25 32। अछाम मंगलसैन का लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98 24 67 28 25।

0: size, and we need to cut 600 kilo meat.
1: Sorry, boss.
2: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
2: ला फेरी यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
5: भाईलाई ठाई रहने बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्वर्टर में लगने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
2: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
5: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरा पारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
2: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 9868147979, 9824625232। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 9824628825।
3: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने ना पट्टा नि पैना त
4: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
3: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी यनी सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाइयो जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141268 ओ 9846649261।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी की राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मौलाव सम्रपात्र और नेपाली पात्र मफी सुन्दी धलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से हेलमेट नहीं लगलग मोटरसाइकिल चलेलक मुख्यमंत्री शाह 500 जरिवाना। गोरखापत्र संस्थान के महाप्रबंधक में हिम्मत बहादुर राव नियुक्त। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित। रोनाल्डो भर्सेस मोड्रिच विश्वकप इतिहास के पहिलो अंतिम महाभिडन्त। हेलमेट नै लग्न ट्राफिक नियम विपरीत मोटरसाइकल चलाइल पाछा सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह। जरिवाना के भागीदार रहलबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन कलक ठहर कर्ती जिल्ला ट्राफिक प्रहरीकारले कैलाली के उहाँ 500 जरिवाना तिरेरबाट। गरम समस्या हुलक कारण मुख्यमंत्री शाहको समयमा वकर के सहारामा हिडुल कर्ती रहे तर सरकारी निवास के परिसर भित्र उहाँ हेलमेट नै लगाके बुलेट मोटरसाइकल चलिलक। भीरलक सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडपाछ चौतर्फी टिकाटिङ पनि शुरू हुल। मुख्यमन्त्री शाहकी स्वकीय सचिव उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक कल रही कानून सुपर कुछ नै हो कि उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शाह आफ्ना से गल्ती हुलक स्वीकार गर्के ट्राफिक प्रहरी करलक जरिवाना बापत के रकम बुझेलबाट। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलके चामुण्डा विद्रासही नगरपालिका सर्त सांकेत डाँडामा दुर्घटनामा पर्लक यात्रुवाहक गाड़ी 14 जना सरलक। प्रारम्भिक अनुमान गरिदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयके अनुसार सुत्खेत मस्त कालीकोतर्फ जैटी कलक K02-00-1055 नम्बरकी गाड़ी आज सड़कमा से गरी 400 मिटर तल कडाली लद्देमा खसल रह दुर्घटनास्थलमा एकजनाकी पहिचान नै खुलक। पुरूषके सफेला पलक जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्रवण कुमार विगत जानकारी दिला। ओहो गाड़ी अनियन्त्रित होके लद्यामा खसलक अनुमान गरिबा। दुर्घटनास्थलमा 35 जना के प्रहरी टोली उद्धार के ला खटलबा। दुर्घटना के विस्तृत विवरण ऐना बाँकी रहलबा। खोज खबरमा घिरिक विश्राम विषम पासा फेरसे विश्वन्त्रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ।
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423759।
0: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा। सरकार गोर्खापत्र संस्थानकी महाप्रबन्धक पद्म हिम्मत बहादुर रावण नियुक्त गर्न निर्णय गरिदिबा बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक मन्त्री परिषद बैठक रावण संस्थानकी महाप्रबन्धकमा पद्म नियुक्त गर्न निर्णय गरिदिबा कैलालीकी रावण संचार मन्त्रालयकी सिफारिशमा गोर्खापत्र संस्थानकी महाप्रबन्धक पद्म नियुक्त गर्न निर्णय कलक सरकारकी प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री शक्तिज पोखरेल जानकारी दिलबाट अस्थंकरके सरकार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक पद्म मोरङके देवराज ढुङ्गाना नियुक्ति गर्न निर्णय गरिदिबा सरकार राष्ट्रिय सदाचार नीति 2083 राष्ट्रिय विज्ञापन नीति 2083 स्वीकृत गर्न निर्णय गरिदिबा मन्त्री परिषद बैठक अर्थ सम्बन्धी कुच नेपाल कानून संशोधनहरू खारेज गर्न बन्न विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिलबा बैठक नेपाल प्रहरीकी 8 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी लायक सर्वहाँकरबाट प्रतिनिधि सभाकी आज बैठक सम्पत्ति सुदृढीकरण फे लन्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 बहुमत पारित कल्बा अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले प्रस्तुत कलक सम्पत्ति सुदृढीकरण फे लन्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 सभाकी बहुमत पारित कलक सभामुख दोर प्रसाद अर्यालको सना कलबाट विधेयकीय दफावर छलफलमा उठलक विषयमा जवाबदेती अर्थ आफ्नो एकठो लक्षित देश ग्रेट लिस्टमा देश निकाल्नलक बटिलोबाट डाक्टर वागले ग्रे लिस्ट मसे देश निकालकेलाक निगरानी भिटी रहलो सम्पत्ति सुदृढीकरण जसिन विषय राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरूपयोग कलशेफे देश ग्रे लिस्ट मसे बाहिर निकाल्न नैसेकना बटिलोबाट विधेयकीय पर फलक संशोधनकी प्रस्ताव सभाकी बहुमत अस्वीकृत कलबाट खोजखबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वतिर बी सामुदायिक रेडियो टिका प्रएफएम
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
5: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
4: मिस्तरान बर्जनाऊ कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबू कहुरा घुम जाए त थाहा पाए
6: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
8: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
9: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
9: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
12: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
13: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: विश्राम पासा फ्रेसे स्वागत बा। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव प्रहरबा देशभर साधारणतया बदली लग्नमा हाल गण्डकी लुम्बिनी हो सुदूरपश्चिम प्रदेशके तराईके भूभागके कुछ देश के पहाड़ी भाग के कुछ ठाउँमा तथा कोशी मधेश बागमती प्रदेश के तराई भाग के कम ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के वर्षा उठिरहला। आज देश की हिमालय पहाड़ी भाग के कुछ ठाउँमा फेर मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम समके वर्षा और हिमपात के सम्भावना बा। लुम्बिनी प्रदेश के तराई भाग के फेर कुछ ठाउँ बागमती और गण्डकी प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई की भाग के कम ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम समके वर्षा के सम्भावना बा। मधेश प्रदेश कोशी प्रदेश तराईकी एक दुई ठाउँमा फेरि मेघगर्जन र चट्याङ सहित मध्यम समके वर्षाको सम्भावना बा। बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशकी पहाड़ी भागकी एक दुई ठाउँमा भारी वर्षाको फेर सम्भावना रहला। आफ खेल खबर। फिफा विश्वकप 2026 के राउण्ड अफ 32 आज रात के फुटबल इतिहास के दुई लेजेण्ड हुक्र क्रिस्टियानो नो रोनाल्डो व लुका मोड्रिच आमने सामने हुइटीबाट युरोपियली फुटबल की दुई पावर हाउस के बीच खेल केवल प्री क्वार्टर फाइनल की यात्रा के लिखने हो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबल में दुई भेटरान स्टार हुकन की विरासत जोगिन लड़ाई के समेत हो। समूह चरण में कंगो कोलम्बिया संग बराबरी तथा उज्बेकिस्तान के ऊपर जीत निकलती ऐलक पोर्चुगल अभिन्फे आपन लय के खोजी में रोबाटो माटी जेज के टोली संग विश्व स्तरीय प्रतिभा हुलेसेफे टोली की अपेक्षा अनुसार संगठित प्रदर्शन गर्न नै सकल हो। अरूतर्फ इंग्ल्याण्डसँग पराजित हुलेसेफे पानामा घना हटाइकी नकआउटमा थामा बनेला क्रोएसिया वा आफ्नो बलियो इच्छा शक्ति हो मिडफिल्ड के अनुभव के आधारमा पोर्चुगल स्तम्भ पर्ना दाउँ बा। सन् 2006 के विश्वकप से आफ्नो देशके जर्सीमा विश्वकप खेल्न शुरू गर्ला दुई सुपरस्टार रोनाल्डो मोड्रिच विगत दुई दशक से विश्व फुटबलकै शीर्ष थामा बा। रोचक थ्याका होकेकी लम्बा अन्तर्राष्ट्रिय करियर हो। रियल मड्रिडसँग बितेलक सफल वर्षकी बावजुद विश्वकपके दुई दशक लम्बा इतिहासमा रोनाल्डो हो मोड्रिच पहिलो हो। अन्तिम चो मैदानमा एक ओभर विरूद्ध भेटिरहलबाट इन्सी अगस्त सन् 2018-2022 विश्वकपमा क्रोएसिया कर्मश फाइनल हो। सेमी फाइनलसम्म पुगेलक विश्वकपके सर्वकालीन उत्कृष्ट मिडफिल्डर मध्ये एक बनलक मोड्रिच हो। पाँच फरक विश्वकपमा गोल गर्न एक्लो कीर्तिमानी खेलाड़ी रोनाल्डो केलाई कि खेल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चकी अन्तिम सबसे भारी परीक्षा हुन बा। यी सबको बादकी बीच एक तितो सत्यका हो कि पहिलो उपाधिकी खोजी मरल कि दुई लेजेण्ड के मध्ये एक के यात्रा यही ओरेन बा। यही समाचार संखोज खबर बनाइल जिनासे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेर से एक चो हेलमेट नै लगलक मोटरसाइकल चलक मुख्यमन्त्री शाह 500 जरिवाना। गोर्खापत्र संस्थानकी महाप्रबन्धकी हिम्मत बहादुर राव नियुक्त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित। रोनाल्डो भर्सेस मोड्रिच विश्वकप इतिहासकै पहिलो अन्तिम महाभियन्त। डिटा बक्ला खोज खबर प्रह प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद। डिटा बक्ला खोज खबर से मेसिता चौधरी विदाई टू एगार पास 6 बजे की खोज खबर सुन्न सिक्दी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुन्दी रवि राम राम।
14: दाई नाथ बा कहाँ जाइ लाग्दो त
15: पेसाब लाग्ता चर्पी जाइ टुका
14: ए रुको ना त पोसिन होकलासे मै टर्च लाइट ओ लट्ठी दिहेतु लेख दाव
15: काचे चुनु लट्ठी ओ टर्च लाइट
14: काकर रहिदाई राटिक दाला बाहे निकर पर्लासे वा टॉयलेट जाई पर्लासे जहिया फे टर्च लाइट बारख ओ लम्मा लट्ठी देख के न जाई पर्था काकर कि बर्खा छ्याक्बा साप रहसे थ टर्च क अजराले सापन ल्या खसे जई था ओ लट्ठी ठ्याक ठ्याक आव सुनख साप भक्त का
15: हो कत्रा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
14: दाई हमन्ना स्कूलिक मैडम सर हुक साप नुक सिद्धा ठाउसी म्यांग पर्लसे ओ काम कर पर्लसे जहिया फेठा फुसियार विपथा गई सिखैल बाट का आम छेटवा दिवा झपास अथवा ढ्याङ्गा चलक ठाउँमा न्याङ्ग पर्लसे डम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याङ्ग पर्था गई कल बाट
16: साप बर्खा छ्याकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परेछ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैसना पिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुँदा बाहिर निस्कट
17: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फेरि साप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
18: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दिथा
19: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
20: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
21: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
20: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
21: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
20: अब त म ढुक्क
22: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
21: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
20: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
21: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
20: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
21: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
23: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
20: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
24: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
22: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
21: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848558
25: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सेकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो, कहा कना हो। बाबा के वस्ता बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दंत रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को पहिलो दोस्रो र तेस्रो शनिबार
0: र सिटी स्क्यान सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहिचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलोजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लीगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-28 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: कोही सबै पेपर अर्को सकिया हो
1: सकियो
0: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस जाइबर ब्लक गरिबर आयौ
0: कोही बैंकमी
1: बैंकमी
0: त्यो त अद्दु पर्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल्नु वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई जानकारी दिनु पर्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
1: सतर्क रहौ ठगी बठेई बचौ
2: सिद्धार्थ बैंक पठेई जनहितमै जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: मोटरसाइकल घुमाकर धर्ने करिना
5: बैठा बैठा रम्यान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुइसक नापिला कोर्से पाछा से पकड़ का बैठा पर्था का
6: ब्रह्म्याना अगर हुना कहीं मई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुईक कारण सर्पदंशक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजिन सजिलो हुल बा
5: एम्बुलेन्स और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सबको ठमा सजिला पादी था कतना ठमाटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्टा पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेरक सुचा का लगभग एंटी भेनम हुईला उपचार केन्द्र में लै जाए पड़ता
4: अपना हुआ जैने करी ना मई द्वान लगा सके राजे
5: वहां न कटलक सपक फोटो खींचना बाची कर से उठेलन बिहार फोटो हिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
6: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
7: सफ डस दारण कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिहमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिला मेर से बैठाई वो लगभग एंटी वेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जाई सप्प कटलसे मोटरसाइकल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा गरी
8: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज